0: A traditional music piece entitled Sa Libis ng Nayon, and that was rendered to us in instrumental version by the late Richard Tan, and was actually used in a fashion show back in the day. We continue to share to you information about the upcoming election, and this is in the many languages that we speak here in multicultural Australia.
1: Handa ka na bang bumoto? Ang halalang pederal ay inihayag na. Kung binago mo kamakailan ang iyong pangalan o tirahan, naglabing-walong taong gulang, o naging isang mamayan ng Australia, kailangan mo i-update ang iyong detalye ng pagpapatala o mag-enroll upang makaboto bago ang ikawalo ng gabi sa Lunes. Bisitahin ang aec.gov.au o kumuha ng enrollment form sa 5 tanggapan ng AEC at ibalik ito sa AEC bago ang ikawalo ng gabi sa Lunes. Ang iyong boto ay makakatulong sa paghubog sa anyo ng Australia. Otorisado ng Electoral Commissioner, Canberra.
2: Είστε έτοιμοι να ψηφίσετε? Οι ομοσπονδιακές εκλογές έχουν ανακοινωθεί. Εάν αλλάξατε πρόσφατα το όνομα ή την διεύθυνσή σας, συμπληρώσατε τα 18 ή γίνατε Αυστραλός πολίτης, πρέπει να ενημερώσετε την εγγραφή σας με τα νέα στοιχεία σας ή να εγγραφείτε για να ψηφίσετε πριν από τις 8 το βράδυ την Δευτέρα. Επισκεφτείτε το aec.gov.au ή λάβετε μια αίτηση εγγραφής από οποιοδήποτε γραφείο της Αυστραλιανής Εκλογικής Επιτροπής AEC και επιστρέψτε την στην Επιτροπή πριν από τις 8 το βράδυ την Δευτέρα. Η ψήφο σας θα συμβάλλει στην διαμόρφωση της Αυστραλίας. Εγκρίθηκε από τον Εκλογικό Επίτροπο Καμπέρα.
0: Information in the many languages that we speak here in multicultural Australia. And this is in regards to the upcoming elections.
3: क्या आप मतदान के लिए तैयार हैं? फेडरल चुनावों की घोषणा हो चुकी है. अगर आपने हाल ही में अपना नाम या पता बदला है, आप 18 वर्ष के हुए हैं या आप एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक बने हैं, तो आपको सोमवार को रात 8 बजे से पहले अपने नामांकन विवरण अपडेट करने होंगे या मतदान के लिए अपना नाम दर्ज कराना होगा. aec.gov.au पर जाएं या AEC के किसी भी कार्यालय से अपना नामांकन फॉर्म ले लें और सोमवार को रात 8 बजे से पहले उसे भरकर AEC को भेज दें. आपके वोट से ऑस्ट्रेलिया का स्वरूप बनाने में सहायता मिलेगी. चुनाव आयुक्त कैनबरा द्वारा अधिकृत.
4: 연방 선거일이 발표되었습니다. 최근 개명 혹은 주소 변경을 했거나 18살이 되었거나 호주 시민권자가 된 성인은 월요일 오후 8시까지 본인의 등록사항을 업데이트하거나 선거인 등록을 마쳐야 합니다. ac.gov.au를 방문하거나 AEC 사무소에서 등록 양식을 받아 월요일 오후 8시까지 작성된 양식을 AEC에 제출하세요. 여러분의 투표가 호주의 미래를 만듭니다. 캔버라 선거관리위원회 위원장의 승인을 받았습니다.
5: 您准备好投票了吗？联邦大选的日期已经公布。如果您最近更改了姓名或地址或刚满18岁，或者心境成为澳大利亚公民，您必须更新自己的登记资料，或在周一晚上8点前登记参与投票。请访问aec.gov.au或前往任何一个澳大利亚选举委员会办事处索取登记表，并在周一晚上8点前填好寄回。您的选票将帮助打造澳大利亚的未来。选举专员于堪培拉授权。
6: 98.5 FM.
0: Resilience and Well-being Radio, sharing to you music for you to be able to just relax at this time and enjoy the moment.

0: जय मिथिला, जय मैथिली। सब गोटे के नमस्कार, प्रणाम आ सुप्रभात। अहाँ सुनि रहल छी 2000 98.5 FM सिडनी पर मिथिला गूंज, द वॉइस ऑफ मिथिला इन ऑस्ट्रेलिया। हम छी अहाँक अपन शिशिरेन्दु झा। प्रत्येक रविवार के भांति आइ फेर हम भेंट कर रहल छी अपने सा, अपन भाषा, अपन संस्कृति आ अपन आवाजक संग। सिडनी में जना कि पहिने हम सब के बात कर चुकल छी जे ई चैनल दुनिया भर में बसल प्रत्येक मैथिल श्रोता के हृदय में हृदय से स्वागत करैत छी। ई कार्यक्रम केवल हमर नहि, इस संसार के प्रत्येक मैथिल मंच पर अछि। अपन प्रश्न, सुझाव, संदेश लेल अहाँ हमर वेबसाइट www.mithilaculturalsociety.au से जुड़ सकै छी या ओहि पर अपन प्रश्न पोस्ट कर सकै छी, अथवा लाइव जुड़े के लेल अपने सब हमरा नंबर भेज सकै छी, अपने सब अपन प्रश्न भेज सकै छी +61 0426 395 298। अपन प्रश्न भेज सकै छी नंबर पर +61 0426 395 298। अहाँ सबके प्रश्न के इंतजार रहते हैं। ऐसा पहिने कि कार्यक्रम के शुरू होए, कार्यक्रम के शुरुआत करी, पछिला बेर के भांति पछिला बेर दूटा विनर भेटल रहे हमरा सबके डांडिया के, अई बेर फेर हम सब दूटा डांडिया के टिकट अहाँ सबके दऽ रहल छी उपहार स्वरूप। परंतु ओहि के लेल अहाँ सबके एकटा परीक्षा उत्तीर्ण करऽ पड़त। ओहि परीक्षा में की पूछल जात, क्विज में की रहते, अई विषय पर अपने सब ध्यान लगेने रहू, क्योंकि बहुत शीघ्र अपने सब से प्रश्न पूछल जात। आ जे क्यों उत्तर सही उत्तर देवे हुनका सबके भेटतन दूटा डांडिया के टिकट आवा वाला मिथिला महोत्सव से और दुर्गा पूजा से। तो बहुत बढ़िया, जना कि हर बेर हम सब शुरुआत करै छी मौसम के जानकारी से। तो आई 27 सितंबर के छे और सिडनी में 27 सितंबर भ रहा है। आई समय प्रातः 8:03 आ 30 सेकंड भ रहा है। तापमान करीब 16 डिग्री सेल्सियस छे, आकाश में बादल लागल है। दिन में भ सके छे किछ हल्का फुल्का फूही पड़े या बरखा के संभावना भ सकत है। तैं यदि बाहर निकले छी तो अपन छता संग में राखब। दरभंगा में अखन राति के लगभग 3:30 बाजि रहल है, तापमान करीब 27 डिग्री, बादल आ बरखा के संभावना बनल है। जनकपुर में रात के करीब 4:15 बाजि रहल है, तापमान लगभग 26 डिग्री आ मौसम बादल तथा बरखा भ सकत है, मौसम बदल सकत है। ई मात्र एकटा अहाँ सबके लेल एकटा चेतावनी छे, लेकिन यदि बाहर निकली तो मौसम के विषय में अपन लाइव अपडेट देख कर निकली। ठीक छे, तो श्रोतागण अपने सब जुड़ चुकल छी हमरा सा, और आई रवि दिन भोरे भोर किछ एहन चीज आई आवा जा रहा है अपने सबके समक्ष जे बहुत महत्वपूर्ण छे मिथिला, मैथिली और मैथिल के संदर्भ में। आई जे अतिथि छे हमरा सबके संगे, उनकर नाम भेलन अमितेश कर्ण जी, और दोसर अतिथि छे जना अपने सब जनै छे खुशी झा, पछिलो बेर रहत। तो आओ पहिने अमितेश जी के स्वागत करी। अमितेश जी, अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद है। ई मिथिला के कला संस्कृति के संग अहाँ जतेक अपन अनुभव लायल छी, जतेक अहाँ अपन अनुभव लायल छी, ओहि अनुभव के आइ जे छै से श्रोतागण सब के संगे साझा करय के बहुत नीक अवसर है। तो हम अहाँ से पहिने जाना चाहब, अपन परिचय दियो और ओहि के बाद जे छै से प्रश्न और उत्तर के दौर शुरू कयल जेतै।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। हम नेपाल से छी, हमर घर सिरहा भेल, जनकपुर के नजदीक में छै। हाँ। और हम प्रोफेशनली हम फैशन डिजाइनर छी।
0: अरे वाह,
1: मिथिला आर्ट सेहो हम करै छी।
0: अच्छा, तहन तो बहुत तरह के चीज है हमरा सबके सीखल लेल भेटत आ बुझल लेल भेटत।
1: जी
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है अपने के। और एत सिडनी में केना छिए? यहाँ
1: सिडनी में हम अखन एज अ फैशन कंसल्टेंट काम करै छी एक ब्राइडल डिजाइनर के साथ। और अपन अखन रिसेंटली हम अक्टूबर एंड में अपन सेहो आउटलेट खोल रहल छी लाइक इन अपन सबके मिथिला कल्चर और ब्राइडल वेयर के स्टोर। सो ओहिमे हमर अपन कलेक्शन रहत और मिथिला आर्ट के प्रमोट के लेल मिथिला आर्ट के प्रोडक्ट सब सेहो हम
0: बहुत नम्हर जानकारी यहाँ दे रहा है। कत अहाँ के स्टोर खुजा वाला है?
1: लिवरपूल में जॉर्ज स्ट्रीट।
0: वाह, अहाँ के स्टोर के लेल बहुत बहुत शुभकामना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सिरन जी।
0: और आवे वाला समय में श्रोतागण अहाँ सबके लेल पता है या ब्राइडल गारमेंट्स के लेल अहाँ सबके कत जाके है? अहू में यदि अहाँ सब मिथिला मैथिली से जुड़ल छी तो अहाँ सबके लेल की डेस्टिनेशन है से अहाँ सबके पता है? आप लिवरपूल में जॉर्ज स्ट्रीट पर एक नया स्टोर खुज रहा है जै में अहाँ सबके प्रत्येक जे इच्छा है वो इच्छा सबके ध्यान रखल जेते। चलू आगा बढ़े छी। दोसर के अतिथि खुशी झा जे जिनका कोनो परिचय के मोहताज नहीं छथि ओ पिछला कई एपिसोड में सहभागी रहल छथि हमर, तो खुशी झा के बहुत बहुत स्वागत है अहाँ के।
2: हाँ, गुड मॉर्निंग, नमस्ते श्रोतागण। आर बढ़िया छे आज का वेदर। आर थैंक यू शिशिरेंद्र जी के।
0: चलो तो ऐसा पहने कि ये बातचीत के हम सब आगा बढ़ाबी जना हर बेर हम सब करे छी माँ भगवती के गीत से। माँ भगवती के गीत से हम सब शुरू करे छी और एक बाद ये बातचीत के आगा हम सब बढ़े बढ़े भाई।

0: बहुत सुंदर गीत तो भोरे भोर जेना प्रार्थना से शुरू होइ छै तो भोरे भोर अही लेल हमसब अहाँ हम अहाँ सबके लेल लऽ कऽ अबै छी। बहुत सुंदर एकटा मैथिली के गीत भजन जे कह दियौ, और ई गीत तो खास कर के हर श्रोतागण अपना आप से रिलेट कऽ सकै छथि। हर व्यक्ति के बचपन में ई गीत सुन के सौभाग्य भेटल हेतन। अपन घर में माँ काकी नानी दाय जरूर ई गीत गुनगुनबैत हेथिन काज करय के समय में। तो चलो जेना कहलहुँ कि हम छी शिशिरेन्दु झा, अहाँ सब सुन रहल छी मिथिला गुंज 2000 98.5 FM सिडनी पर। अमितेश जी समर हमरा सब संगे बनल छथि। तो अमितेश जी कहू जे जहन हम कहै छियै कि मिथिला कला, तो मिथिला कला की केवल मधुबनी पेंटिंग के बात करै छी कि मिथिला कला में किछु और अधिक छै जे हमरा सबके नहि पता अछि? कियाकि लोग आइ काल्हि मधुबनी पेंटिंग और मिथिला आर्ट सबके एक जगह बात बुझै छथिन, अहाँ एक ऊपर में किछु प्रकाश डालियौ।
1: मधुबनी पेंटिंग अखन कमर्शियलाइज और बिजनेस के पर्पज से जे एकटा रिनाउन नेम बनि गेल छै, लाइक ब्रांड नेम बनि गेल छै, ओकर मधुबनी पेंटिंग से ज्यादा मिथिला कल्चर बहुत पैघ छै। तो मिथिला कल्चर में अपना सबके कल्चर कम्युनिटी, अपना सबके दिनचर्या और हर एक जन्म से लेकर मृत्यु संस्कार तक के जते संस्कृति रीति रिवाज छै, वही पूरा समेट के अपन सबके भोजन सब के पहिरन सब समेटल छै। ओहिमे मधुबनी पेंटिंग एकटा माध्यम बनि गेल छै कि जे अपना सब ओकरा पहचान दऽ सकै छी इंटरनेशनल।
0: अच्छा अच्छा, तो जे कमर्शियलाइज भऽ गेलै आ जे लोक सब जे जाय चीज के खरीद के लबै छथिन अपन घर में ऑफिस में सजबै छथिन, ओ मधुबनी पेंटिंग भेलै।
1: मधुबनी पेंटिंग ओकरा कनि भास्ट कहबै तऽ हमरा विचार में एकटा मिथिला आर्ट, मिथिला कल्चर, मिथिला आर्ट,
0: मिथिला आर्ट
1: और मधुबनी के विषय में एकटा मधुबनी जगह के नाम से फेमस प्रचलित भेल गेल छै, ताहि दुआरे ओकरा मधुबनी पेंटिंग में बेसी कराए तक।
0: मधुबनी आर्ट में आर कथी कथी अबै छै अगर पूछी तो?
1: मधुबनी आर्ट बेसिकली तो एक मतलब वॉल आर्ट फॉर्म से स्टार्टिंग तो लोग जना अपन सबके दादी काकी सब अरिपन से आंगन में अरिपन से दीवार में कोबर से नैना जोगिन से स्टार्ट केने छथिन। ओहि के लेल ओहि में अखन जना अपन से कल्चर अनुसार कोठी भेल घर के
0: कोठी की वजह से अगर कह दें क्या कि हमरा बुझल है जो बहुत सारा श्रोतागण कोठी के बारे में नहीं बुझे थे जे
1: पहले पहले कब सबके टाइम में दादी नानी सबके टाइम में बहुत स्टोरेज के लेल बर्तन सब या बड़का बड़का ड्रम सब नहीं रही छले, तो वो सब माइट के कंटेनर बनवे छलखिन।
0: अच्छा वाह।
1: ओमें स्टोरेज के लेल जना दाल धान चावल आटा ये सब स्टोरेज का करे, मतलब वो एक
0: स्टोर करे छलखिन अनाज सबके। तो वो जो कंटेनर होइ छलै जे माटि के बनल रहै छलै ओकरा कोठी कहल जाइ छलै। तो कोठी पर सेहो एहि तरह के आर्ट सब छै, चित्र सब छै से कयल जाइ छै। तऽ अहाँ जे जे चित्र सबके नाम लेलियै ओ भित्ति चित्र भऽ गेलै, अरिपन भऽ गेलै जे जे जमीन पर कयल जाइ छै, भित्ति चित्र भेलै जे दीवार पर कयल जाइ छै, फेर कोवर भेलै जे जे विवाह के समय में कयल जाइ छै, ओहि तरह से फिर गोदना सेहो होइ छलैए, गोदना से प्रेरित किछु रेखांकन किछु आर्ट होइ छलैए। आर खुशी जी अहाँके पास एहि विषय में किछु जानकारी अछि?
2: एक्चुअली हमरा जहाँ तक पता अछि जे दूटा पेंटिंग रहै, एकटा मिथिला मधुबनी पेंटिंग कियाकि ओ मधुबनी ओरिजिन से स्टार्ट भेल रहै, एकटा मंजूषा रहै जे भागलपुर साइड में बनै। तऽ मंजूषा आइ काल्हि लगभग आब एकदम खत्म हो के कगार पर छै, कियाकि लोक अखन ओकर अवेयरनेस नहि छै। मधुबनी अखन कनी
0: फेमस लोक जानै छथिन मंजूषा के, भागलपुर रीजन के जे लोक सब छथिन ओ सब मंजूषा के जानै छथिन।
2: मिथिला साइड के दूटा मतलब
0: नै हम बुझलहुँ अहाँ के बात, लेकिन जे आर आर्ट फॉर्म छै हम ओहि चीज के विषय में हम कनी बात करय चाहै छलहुँ। जेना भेलै भित्ति चित्र, भेलै अरिपन, कोहबर, गोदना, सुजनी आर्ट एकटा होइ छै, सिक्की आर्ट होइ छै,
1: आरो चीज सब।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: महादेव माइट के।
0: हाँ माइट के। तो ई सब जे छै से मिथिला के अपन चीज छै जे मिथिला धीरे धीरे क के विस्मृत कऽ रहल अछि। जतेक युवा सब छथि, जतेक बालक सब छथि, बालिका सब छथि हिनका सबके बुझाइए आब ए चीज के विषय में पतो नहीं हेतनि। तैं हमर सबके आब जिम्मेवारी बनैए कि हिनका सबके बतबियन जे हम सब की पाछा छोड़ी आयल छी आ समय आबि चुकल अछि जखन अहाँ सब फेर पुनः जागरण करू आ सब चीज के पुनरुत्थान करू। तैं हमर आह्वान अछि अपने सबसँ उठियौ देखियौ अहाँ सब की कतेक अहाँ सबके जे विरासत भेटल छलै कतेक महान छलैए हम सब की पाछा छोड़ि के आबि चुकल छी। तऽ एहिसँ पहिने की आगाँ बढ़ी अहाँ सबके याद दिया दी कि अहाँ सब सुनि रहल छी मिथिला गुंज 2000 98.5 पर और अहाँ सबके लेल एकटा क्विज बहुत जल्दी अपने सबके सामने में राखल जेतै जकर प्राय पुरस्कार स्वरूप अहाँ सबके भेटत डांडिया के कपल टिकट। और आबा वाला 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक मिथिला कल्चरल सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइज करा जा रहा है दुर्गा पूजा और मिथिला महोत्सव 2026। दुर्गा पूजा और मिथिला महोत्सव 2026 में की हो वाला छे ऐ के विषय में हम सब बात करते रहबे। लेकिन आगा बढ़ा से पहने एक प्रश्न खुशी जी से क्या कि खुशी जी के तो जे उपस्थित छन वो एक किछ विशेष कार्य के लेल छन आ वो कार्य है जे किछ विस्मृत शब्द है मैथिली में या मैथिली में एक बहुत खास मुहावरा कहल जाए जकरा फकरा कहल जाए छे। ठीक छे ओहि चीज के लऽ कऽ खुशी जी हमरा सबके किछ ज्ञान प्रदान करती तो आई के पहला शब्द की अछि खुशी जी जे बुझा रहल अछि जे श्रोतागण के जननाय आवश्यक छै तो पहला शब्द की छै।
2: पहला शब्द क्या कि मैथिल जे छथिन खाना पर बहुत ये रहै छथिन मैथिल भोजन बहुत सबसे ज्यादा प्रिय रहै छै मैथिल के तो हम किचन में जाय चाहब तो सबसे पहला जे छै हम स्टार्ट करब रोटी से।
0: अरे वाह रोटी तो सब को सब जने छै तो
2: नहीं मैथिली में रोटी के कहै छै सुहारी।
0: वाह अमितेश जी आप जने चलिए
1: जी जरूर।
0: वाह
2: नहीं हमरा बुझे जे रहल छथिन जे उम्र से रहल छथिन से ऑफ कोर्स
0: सोहारी सोहारी जे बने छै सोहारी कथि से बने छै
2: चिक्कस तो आटा जे भेले से भेले चिक्कस आ रोटी भेले सोहारी।
0: हां लेकिन फिर सोहारी
2: खेबे एकरा कथु संगे तो ऑफ कोर्स सब्जी जे भेले से भेले तरकारी
0: तो अहाँ सब सुनि रहल छी ऐसा शब्द सबके नोट करियौ और सबके अपन उपयोग में लेना शुरू करियौ
2: ताकि मैथिली जल्दी से सीख सके
0: मैथिली जल्दी से सीख सके
2: तीमन से हो कहे छे दैट्स ट्रू
0: तीमन में हमरा बुझाया कि वो करी ज्यादा होय छे और तरकारी जे छे से कनी कहा के जे
2: रसदार होय
0: छे सदबद जे नाय भेले
2: ग्रेवी वाला तीमन कनी फ्राइड
1: नहीं नहीं
0: झोड़ वाला मैं हां झोड़ जे आ झोड़ की होय छे से जनते हेबे झोड़ में जे ग्रेवी बेसी कनी आय में ग्रेवी दो दियो तो अथी भ जात तो बहुत नीक जानकारी है सर। ए तरह से हम सब जुड़ल रहब तो अपने सब सुनत रहियो क्याकि ई बहुत शिक्षाप्रद सेहो हो वाला छे। तो चलू अब आगा चले छी अहाँ सब किछु बात कर रहल छलहुँ हैं मिथिला आर्ट के बारे में तो कला जे छै से जीवन से अलग नहीं छै जीवन भीतर के जीवन में जीवन और कला दुनू एक दोसर से जुड़ल अछि तो अगर ई कहल जाए कि ई कला के ऐतिहासिक जड़ केना बुझल जाए कतौ से ई कला शुरू भेलै केना प्रारंभ भेलै तो यदि ई के विषय में किछु कहि सकिए पर किछु प्रकाश डाल सकिए अपने मितेश जी
1: तो जेना मिथिला कला मिथिला संस्कृति जुड़ल छै तो जरूर राम सीता के विवाह जनकपुर से स्टार्ट भेल हेतै हमर जेना बुझल अछि और ई सीता राम सीता के विवाह से जेना दरबार नगर पूरा सजाओल गेल पेंटिंग से चित्र से और आरो सामान सब से तहिया शायद तहिया से मिथिला आर्ट के बेसी
0: तहाँ कहि रहल छी जे एतेक पूरा प्राचीन इतिहास छै जे राम सीता के विवाह के समय से जे शहर सजायल गेलै जाय कलर से जाय चित्र से या जाय प्रकार के रंग से वह जे छै से ओ
1: ऐतिहासिक प्रमाण शायद वही से पहले भ सके तब राम सीता के विवाह में शायद बनल हेतै
0: जी जी
1: तो ओ से पुरान इतिहास भ सके
0: बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जे जे संदर्भ भेटे छे मिथिला आर्ट के ओते से शुरू होय छे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अइ सब में जतेक जतेक कला के नाम ले लिए हमसब, कोहबर कह लियो, कह लियो भित्ति चित्र, कह लियो सुजनी आर्ट, कह लियो गोदना, कह लियो जे कुछ कह लियो, अइमे महिला सब के की भागीदारी छलेन है?
1: महिला एक कला से कहबे से मेन संस्कृति और संस्कार छे, जे महिला सब के हरेक दादी नानी से भेटल संस्कार छे, उ सब जन्म से लकर मृत्यु बरण तक जे एकटा शिक्षा एकटा संस्कार दैत आबै छथिन, जेना छठिहार घर से ओ लाल कारी के पूजा करै छथिन, ओहि के बाद जे मृत्यु बरण तक के जते संस्कार जे सब में, और जेना सोहर समदाउन विदाई के समय पे और मजाक बराती सबके संगे से सब, मतलब वो महिला
0: तो हम अहाँ सब पूछा फिर प्रश्न की सोहर समदाउन एकर सबके की अर्थ छे, ऐसे पहने की इस चीज के प्रश्न के उत्तर दियो। एक गीत सुन ले जा जे जे बहुत रिलेवेंट छे अहाँ के अ प्रश्न के उत्तर में। तो वही समय के वही परिस्थिति के गाना छे जता राम भगवान मिथिला में पहुँच गए छथिन, धनुष के तोड़ चुकल छथिन, आप मिथिला के जे सीता जी के जे संगी सहेली सब छथिन उनका मजाक कर रहल छथिन। अइके बाद हम अहाँ से पूछब कि सोहर समदाउन की होइ छै, तो पहिने से गीत सुन लेल जाए।

0: एहि गीतसँ पहिने मितेश जी बात कऽ रहल छलहुँ हेँ, हमसभ कोन अवसरपर कोन प्रकारके गीत गाएल जाइ छै, अहाँ कहलियै सोहर समदाउन, हमरा किछु नहि बुझऽमे आयल। हमरा हम श्योर छियै जे बहुत सारा श्रोतागण एहन हेता जिनका नहि पता हेतनि कि सोहर की होइ छै, समदाउन की होइ छै, कोन अवसरपर कोन प्रकारके गाना गाएल जाइ छै, कोन अवसरपर कोन प्रकारके आर्ट फॉर्म यूज कयल जाइ छै, तऽ सोहर की होइ छै?
1: सोहर जेना बच्चाके जन्म पर गाएल जे गीत गाओल जाइ छै ओकरा सोहर कहल जाइ छै।
0: अच्छा।
1: आ समदाउन बेटी के विदाई में गाएल जाइ छै।
0: अच्छा अच्छा।
1: कनिके ओ दुख व्यक्त करय वाला गाना रहै छै।
0: अच्छा।
1: आर तहन हरेक ओकेजन में डिफरेंट डिफरेंट गाना, कोबर के अलग गाना, बटगबनी, डोमकच, जाट जटिन, हरेक ओकेजन, हरेक ऋतु, हरेक बसंत पे एक एक डिफरेंट गाना रहै छै अपन सबके।
0: अच्छा।
1: ओ अपन सबके संस्कृति झलकाबै छै शायद गाना सबसँ।
0: हाँ, तऽ जे कथी कथी के नाम लेलिए अहाँ, लेलिए सोहर, समदाउन,
1: कोबर, डोमकच, जाट जटिन,
0: तो ये सब अलग अलग प्रकार के गाना है जे जे गायल जाए छे विभिन्न अवसर पर। और ये जे जना ऋतु बदले छे वही प्रकार के सही गाना साल के अलग अलग समय में अलग अलग तरह से गायल जाए छे, अलग अलग गाना गायल जाए छे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी छला हमरा लेल, क्योंकि बहुत किछु हमरा नहीं पता है। और धन्यवाद अमितेश जी अहाँ के प्रकार, हमरा हम श्योर छी जे श्रोतागण सब सुनकर सेहो लाभान्वित भऽ रहल हेता। एहिसँ पहिने की आगाँ बढ़ी, 17 अक्टूबरसँ 19 अक्टूबर तक जे प्रोग्राम छै एहि विषयमे खुशी जी अगर किछु अहाँ बाजि सकबै जे की कऽ रहल छी हमसब, तऽ आर केना केना प्रोग्राम होवला छै एहिके विषयमे जे छै से दू चारि शब्द कहियौ।
2: तऽ प्रोग्राम जे छै से एना छै जे 17 अक्टूबरसँ स्टार्ट छै, मॉर्निंगमे कलस्थापन हेतै 10 बजे, आर ओकरा बाद जे छै धीरे धीरे प्रोग्राम बढ़तै, आर ओही दिन मिथिला महोत्सव सेहो छै। आर
0: मिथिला महोत्सव कए बजेसँ शुरू?
2: मिथिला महोत्सव 3 बजेसँ स्टार्ट हेतै आर 6:30 बजे तक चलतै, किएकि 7 बजेसँ फेर माता की चौकी छै।
0: तऽ मिथिला महोत्सवके जे बात केलियै ओहिमे मिथिलाके मतलब कोन ओहिमे की होवला छै मिथिलासँ सम्बन्धित?
2: ओहिमे अहाँके 3.5-4 घंटा लेल अहाँ मिथिला जी सकै छी। ओहिमे मिथिला फूड रहतै, मिथिला कल्चर रहतै, आर्ट रहतै, जते हमसब कवर कऽ सकै छलियै मिथिलाके। आर जे केओ लास्ट ईयर मिथिला महोत्सव ज्वाइन केने रहथिन, आयल हेथिन, ओ एहि चीजके मतलब रिलेट कऽ सकै छथिन हमरासँ, जे लास्ट ईयर जे केओ आयल रहथिन मिथिला महोत्सवमे ओ देखने रहथिन, जे एकटा छोट सा प्रयास रहै हमर सबके जे सिडनीके धरतीपर मिथिलाके कनिके काल लेल सही लायल जाए, जे आगाके जे जेनरेशन छनि ओ सब किछु तऽ देखथुन, किएकि आब हमसब बहुत दूर छी घरसँ, फैमिलीसँ, इवन ग्रैंड पेरेंट्स सेहो नहि रहै छथिन, मोस्टली बच्चासब एनाहिते नम्हर भऽ रहल छथिन।
0: जी, तब ई जे मिथिला महोत्सवमे कहलियै अलग अलग प्रकारके कार्यक्रम एक्टिविटी होवला छै, मिथिलाके आर्ट, फूड, कल्चर, गीत, नृत्य, ई सब हेतै, एहिके बाद माता की चौकी हेतै 7 बजेसँ।
2: हाँ जी।
0: ताहिमे माता की चौकीके विषयमे किछु अहाँके पास आर डिटेल अछि कि?
2: माता की चौकी तऽ जेना होइ छै, एक्चुअली एहिबेर जे मिथिला महोत्सव अयलैए से मतलब दुर्गा पूजा जे भऽ रहल छै, किएकि दुर्गा पूजा छै तऽ खाली मिथिला तक सीमित नहि छै, ई पूरा इंडियाके कैप्चर मिथिला कल्चरल सोसाइटी जे छथिन से आ मैथिल होइ छथिन, मैथिलके होस्टिंग बहुत पसन्द होइ छनि,
0: तऽ
2: मतलब अहाँ सब रिलेट कऽ सकै छी, तऽ मिथिला होस्टिंग लेल बहुत फेमस छै, गेस्ट एनाइ बहुत नीक लागै छै।
0: तऽ एकर पर्पस मात्र ई नहि छै जे खाली मैथिल सब आबै, एकर पर्पस ई छै जे भारतके प्रत्येक व्यक्ति एहि चीजसँ सम्बन्धित अपना आपके जोड़ि सकैत, आ भारते नहि, विदेश रहऽवला जे केओ लोक,
2: हम एतऽ रहऽवला, हम बाहर रहऽवला, हम इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, एशियन, हम सब गोटाके इन्वाइट करै छियनि, किएकि एक तऽ इंडिया वास्ट छै आ ओहिमे बिहार आरो वास्ट छै, तऽ ओहिमे हमरा बुझा रहल अछि जे हम सभीके इन्वाइट कऽ रहल छियनि, क्योंकि बहुत एहन सारा चीज छै जे बहुत नै पता छै लोक के त यू विल गेट टू नो एवरीथिंग
0: सो 17 तारीख माता के पूजन हेतन फिर 3 बजे से 3:30 बजे से अहाँ कहलिए
2: मिथिला महोत्सव स्टार्ट हेतै हां
0: 6:30-7 बजे से माता की चौकी शुरू हेतै
2: हां
0: और अगला दिन के की प्रोग्राम छै
2: अगला दिन फेरो मॉर्निंग में माता के पूजा हेतन आर जे एकटा बहुत जटिल समस्या छले अत मिथिलानी सब लेल खोइचा भर के तो ओ जे छै मिथिला महोत्सव मिथिला कल्चरल सोसाइटी के बड़ा ध्यान रखलखिन नए बेर क्योंकि हमरे काफी फ्रेंड्स सब छथिन आर बड़ा ही स्ट्रेस होइत रहै छले जे भाई अहाँ कतौ जा रहल छी खोइच पर तो हम क्या बेर तो हम अपने मंदिर में भरने छी तो हम कह दै छलियै ना कतौ नै टाइम भेट रहल त
0: हां के एक समय 1 मिनट लेल रोकब आ कहबी खोइच भरनाय की होइ छै
2: खोइच भरनाय ई होइ छै जे मिथिला में जखन बेटी घर अबै छथिन या पुतौ घर से जाइ छथिन तो जे केओ नमहर होइ छथिन साउस मां जे केओ साउस मतलब सासू मां तो जे केओ नमहर होइ छथिन ओ खोइच दै छथिन खोइच में चाउर होइ छै दूब होइ छै ग्रास ग्रीन ग्रास हल्दी के गाठ होइ छै किछ सिक्का होइ छै आर सिक्का मतलब किछ पैसा होइ छै आर खोइचा जे छै से घर के छोट यानी मोस्टली ननद या बहिन वगैरह खोलै छथिन आर जे खोलै छथिन ओ जे किछ पाई रहै छै हुनका भेटै छै आ बाकी के खोइच जे रहै छै ने जिनका जे कनिया रहै छथिन
0: तो अहाँ कहलिए जे बेटी के अथी कयल जाइ छै लेकिन ये तो माँ भगवती छथिन तो माँ भगवती के सामने में क्या खोइच
2: माँ भगवती के खोइचा देवा लेल मतलब हम जे बच्चा से देखने छी अपना दादी माँ के कि दाई कहैत रहथिन जे भगवती एलखिन है तो जखन एलखिन है तो ओ बेटिए छथिन तो एलखिन है तो हुनका एना तो लोग खाली हाथ बेटी के हमरा बुझा मिथिला की कतौ विदा नहीं करल जाइत हेतै इंडिया में तो तैं जखन ओ अबै छथिन ना तो एकटा सुहागन के जते सामग्री होइ छै ओ दौ का खोइचा में हुनका विदा कैल जाइत रहे ताकि अगला बेर माँ फिर या सुख समृद्धि सुहाग लऽ कऽ अबथुन हमरा सबके आशीर्वाद देथुन
0: बहुत बहुत पैघ चीज छै जे घर घर में मिथिला में एहि प्रकार के वातावरण छलै जे तब जे घर के सौभाग्यशालिनी मैथिलानी सब छलखिन हैं हुनका सबके घर से जाय के समय में और घर आवा के समय में या बेटी के तरह से या पुतौ के तरह से एहि प्रकार से हुनका सबके स्वागत होइ छलै ने तो अहाँ सब बुझियो जे अहाँ सब कतेक महान संस्कृति के हिस्सा छी कतेक महान परम्परा के हिस्सा छी और एहि परम्परा के आगा लऽ कऽ गेनाइ अहाँ सबके हाथ में अछि तो जुड़ल रहू हम सब सुनि रहल छी मिथिला गुंज 98.5 पर एहिसँ पहिने की आगा बढ़ी अहाँ सबके याद दियादी एकटा क्विज अहाँ सब पूछल जायत आब समय आबि गेल छै ओ प्रश्न की छै से जे केओ सफल उत्तर करता हेता हुनका सबके भेटतनि डांडिया के तरफ से दूटा टिकट तो प्रश्न ई अछि जे अहाँ के मैथिलानी सबके लऽ कऽ जे एक्टिविटी हो वाला छै दुर्गा पूजा में ओकर की नाम अछि मैथिलानी सबके लऽ कऽ जे एक्टिविटी हो वाला छै दुर्गा पूजा में ओकर की नाम अछि अहाँ सब अपन उत्तर भेज सकै छी 0426-395-298 पर अपन उत्तर भेज सकै छी 0426-395-298 पर प्रश्न अहाँ सबके याद हैत जे दुर्गा पूजा में जे मैथिलानी सबके लऽ कऽ जे एक्टिविटी हो वाला छै ओकर की नाम छै अहाँ के उत्तर के इंतजार अछि और जना कहलहुँ प्रत्येक सफल उत्तरकर्ता के दूटा डांडिया के टिकट फ्री में देल जेतन तो अमितेश जी आओ फिर आगा बढ़ल जाए तो जहन हम मिथिला आर्ट के बात करे छी तो इमे हालांकि हमरा बहुत ज़्यादा बहुत अधिक अनुभव नहीं है लेकिन हम देखे छी कि ओहिमे किछु सिम्बॉल सब बार बार रिपीट होइ छै तो एहि सिम्बॉल सब के लऽ कऽ किया ई सिम्बॉल सब रिपीट होइ छै एहि प्रकार के सिम्बॉल सब की छै तऽ किछु एहि विषय मे अपने बाजि सकबै
1: जी जरूर मिथिला आर्ट में ज्यादातर माछ बांस कमल कछुआ नाग
0: अच्छा।
1: हाथी ई सब के दर्शायल जाय छे जेमे माछ छे कि समृद्धि और प्रजनन के लेल ओकरा प्रजनन के प्रतीक मानल जाय छे
0: जेना बांस भरल पुरल रहे
1: जी बांस भेल वंश वृद्धि के लेल कछुआ स्थिरता दीर्घायु के लेल कमल समृद्धि
0: समृद्धि के लेल
1: तहिना हाथी भेल आरो नाग नाग रक्षा के लेल ई सब के लेल संकेत में मानल जाय छे।
0: ई तो बहुत बहुत अगर अहाँ सिंबल में देखा रहल छिए जे अहाँ के घर में एक प्रकार के सिंबल है और अहाँ अहाँ के घर में सुख समृद्धि बनल है स्थायित्व बनल है रक्षित छी हर प्रकार से तो ई तो बहुत बड़का बात भेले जे अपन जे पूर्वज सब छला है उनका सबके पता छले ना जे कौन प्रकार से अपन घर के रक्षा कैल जा सके छे धियापुता के बताएल जा सके छे बहुत निक बात। और हमरा इहो पता चलल जे मिथिला आर्ट जो है छे से दू प्रकार के आर्ट होय छे
1: जी
0: एकटा
1: कचनी और एकटा भरनी जे भरनी में फ्लैट कलर यूज कैल जाय छे तो और कचनी में बहुत महीन लाइन सब के डिफरेंट पैटर्न्स में यूज करके डिजाइन कैल गेल छे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा वाह तो और एकटा जे गोदना होय छले है ओय के विषय में अपने पता ओय के विषय में अगर कुछ कह सकिए गोदना जे आर्ट छे
1: गोदना एक्चुअली हमरा जहाँ तक लगे दूध और आई थिंक दूध और ये कथ कहे छे स्याही से बनावे छे
0: अच्छा अच्छा
1: और नीडल से पंच कर के डिजाइन करे छे लेकिन वो गोदनों में अपन सके देवी शक्ति तांत्रिक विद्या सब के प्रयोग कर के
0: तो आई कल के जे टैटू होय छे
1: अखन के ऐसा मॉडर्न टैटू से
0: ऐसा टैटू सैकड़ों साल पहले जे छे से गोदना चले या और मिथिला में चले या गोदना और जे आई कल के जे लोग सब कहे छथिन टैटू अपन बॉडी पर खास कर एमहर ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज्यादा फेमस है तो अहाँ सब सुन रहल छी श्रोतागण आइ कतेक जानकारी भेट रहल अछि तऽ अहाँ जे कहलियै जे प्रतीक होइ छलैया माछके कमलके बाँस सूर्य चंद्रमा सुग्गा कछुआ ई सब जे छै से अहाँके मिथिला आर्टमे एकरा सबके देखायल जाइ छलै दर्शायल जाइ छलैया ठीक छै तऽ अगर यदि हम रङ्गके बात करी तऽ कोन प्रकारके प्राकृतिक रङ्ग या कोन तरहके रङ्गसँ रंग के यूज होइ छे मिथिला आर्ट में
1: पहले त जेना दादी नानी सब स्टार्टिंग करै छलखिन त ओ सब नेचुरल कलर सब यूज करै छलखिन जेना पत्ता सब से ग्रीन कलर निकालै छलखिन डिफरेंट फूल सब से अरहुल गेंदा के फूल सब से डिफरेंट रेड ऑरेंज कलर सब निकालै छलखिन हरदी से येलो कलर तहिना सिकेट से सिकेट के बिया होइ छलै ओइसे पर्पल कलर निकलै छलै या इएह सबसे स्याही सब ब्लैक बनबै छलखिन सब नेचुरल कलर्स यूज करै छलखिन अखन कमर्शियलाइज के कारण से सब आप परमानेंट हो चाही ताहि दुआरे अखन एक्राइलिक कलर सब वाटर कलर सब यूज होइ छै ज्यादातर।
0: वाह बहुत बढ़िया और ई तरह के चीज सब जे छै से जेना आइ काल्हि के होली वगैरह के में कहल जाइ छै कि कतेक बहुत सारा कलर जे छै से घातक होइ छै स्किन के लेल चेहरा के लेल एहि सब चीज के लोग ध्यान नहि रखै छथिन तऽ हर छोट सँ छोट चीज के ध्यान राखल गेल छलैया अपन मिथिला में
1: हर एक चीज प्रकृति से जुड़ल
0: प्रकृति से जुड़ल छलैया जे किछु अहाँ जे अगर मिथिला आर्ट बनबै छी ओहिमे प्राकृतिक सिम्बॉल सब छै जे कलर छै से प्राकृतिक रंग छै जे आकृति छै ओहो प्राकृतिक छै दैवी शक्ति छै तऽ अहाँ सोचियौ जे ई मामूली बात नहीं छे। आगा बढ़ल जाए अब आगा बढ़ से पहिने एकटा गाना सुनबा चाहे छी हमर ई गाना जे छे से अहाँके पर एकटा कंटेम्पररी सॉन्ग जकरा कह सकै छियै तऽ पहिने सुनो एक बाद एक गाना के विषय में बात करै छी

0: गीत अहाँके सुन रहल छलहुँ हैं। ई एकरा पारंपरिक गीत तऽ नहि कहबै, लेकिन ई जे छै से आइ काल्हिके कंटेम्पररी गीत छै। लोक सब ओहिमे कनिक नोक झोंक जे छै से दियर भाउज के नोक झोंक, एहि तरह के चीज जे छै से एहिमे सुनल भेटत अहाँके। आओर किछु मैथिली शब्द जे सब सुनने हेबै ओ सब सेहो सुनल भेटल हैत। तऽ जेना बात कऽ रहल छलहुँ हैं एहि गीतसँ पहिने जे 17 अक्टूबरसँ 19 अक्टूबर तक दुर्गा पूजाके आयोजन भऽ रहल अछि, ओहि दुर्गा पूजाके विषयमे खुशीजी बाजि रहल छलखिन हेँ। तऽ खुशीजी किछु एहिके विषयमे जे कहि रहल छलियै ओ डिटेलके पूरा करियौ।
1: तऽ हम श्रोतागण सबके कहऽ चाहबनि जे प्लीज नोट डाउन करू 17-19 अक्टूबर। 17 अक्टूबरके मॉर्निंगमे 10 बजे कलस्थापन हेतै, ओकरा बाद मिथिला महोत्सव छै। मिथिला महोत्सव एकटा पेड इवेंट छै, लेकिन आउ सब गोटे आओर आनन्द लिअ एक कल्चरके। कल्चरल इवेंट छै जाहिमे फूड, डांस, मिथिला कल्चर सब किछु कवर कयल गेल छै। ओकरा बाद साँझमे जे छै माता की चौकी छै, आर बहुत बढ़िआँ लागत। जे केओ दिल्ली साइडसँ छथिन, मेरी खुद की शादी दिल्ली में हुई है, तो आप इन्जॉय कर सकते हैं। यू कैन लाइक हम देख सकते हैं फिर से दिल्ली का वही जोश नवरात्रि के टाइम का। और 18th को फिर से मॉर्निंग में पूजा है, तो उसके बाद जो है खोइछा, जो मिथिला का ये है, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि खोइछा का कैसा रहता है, तो उसके बाद खोइछा है। और जो एक और हमारे पास समस्या रहती थी कन्या भोजन, तो जो नवरात्रि में हम यूजुअली करते हैं, तो मिथिला कल्चरल सोसाइटी एक कन्या भोजन भी ऑर्गेनाइज कर रही है। हमारे पास कन्याएं होंगी, हम उनको प्रॉपरली बिठाएंगे, और जिनको भी कन्या भोजन के लिए

0: न्यायें नहीं मिल रही हैं, प्लीज़ आइए, आपको जो जो कुछ भी है कन्या को खिलाना है, गिफ्ट देना है, एनीथिंग, वो उसमें कवर किया जाएगा। और 18th का शाम बहुत धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि जो गुजरात का मेन डांडिया गरबा जो है वो होने वाला है, तो प्लीज़ आइए, क्योंकि मुझे लग रहा है एड्रेस बार बार गूगल मैप पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक बार एड्रेस फीड करना है कोकल हिल्स कम्युनिटी सेंटर का। और 3 दिन के लिए हम जो है ट्राई कर रहे हैं कि हम इंडिया का जो नवरात्रि का जो फील है, जो गुजरात का, जो बंगाल का, जो दिल्ली का, वो एक छत के नीचे हम देख सकें।
1: वाह, तो ये जो यहाँ कह लिए, तो ये तो बहुत अच्छा बात आपने बताया कि माता का जगराता, मिथिला महोत्सव पहले, फिर माता का जगराता। तो मिथिला महोत्सव में से जितने भी हमारे बिहारी भाई बहन हैं, मिथिला से हैं, नेपाल से हैं, वो सभी आए, आनंदित हों।
0: नहीं, हर जगह से आए, मतलब कोई भी, नहीं कोई तो भी कल्चर पता नहीं चलेगा।
1: हाँ, कोई भी हैं। और फिर माता के जगराता, जैसे कि हम जानते हैं दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ के लोग काफ़ी भक्तिभाव से माता का भजन और जगराता और माता की चौकी करते हैं।
0: हाँ।
1: अगले दिन जो मैथिलानी अपना खोइछा भरेंगी, जो इससे पहले खुशी जी ने कहा था कि क्या होता है खोइछा के विषय में उन्होंने बताया था, फिर बच्चों का कन्या पूजन होगा और फिर शाम में
0: डांडिया,
1: जिसके लिए पूरा सिडनी उमड़ पड़ने वाला है क्वाकर सिल्स कम्युनिटी सेंटर में। आइए, आप लोग आनंद लीजिए। और ये अगले दिन सिंदूर खेला करेंगे, जो हमारी ये हैं सुहागन औरतें हैं।
0: हाँ, बंगाल में सिंदूर खेला होता है, जो
1: तो कहने का ये मतलब है कि आपने इस पूरे भारत को कवर किया है, बिहार, बंगाल, यूपी, पंजाब, राजस्थान, और कहीं किसी भी रीजन को आपने छोड़ा नहीं है, जबकि जो कि एक बहुत बड़ी बात है।
0: नहीं, जैसे मैंने कि पहले भी बोला कि मिथिला को होस्ट करना, होस्टिंग बहुत पसंद है, और जब होस्टिंग पसंद है तो इंडिया तो फैमिली है पूरी, तो हम यहाँ इंडिया को कवर नहीं कर रहे हैं, हम लाइक वी आर इनवाइटिंग होल ऑस्ट्रेलिया टू डू विजिट एंड लाइक एक्सपीरियंस आवर कल्चर।
1: ग्रेट, सो मार्क योर कैलेंडर फॉर 17th October टू 19th October। स्टार्ट मॉर्निंग एट 8 AM। कम अलॉन्ग विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, एन्जॉय द कल्चर ऑफ मिथिला, मैथिली एंड मैथिल्स। देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न अबाउट, देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, फूड, डांस, म्यूजिक, देर इज़ नथिंग यू कैन मिस इट। प्लीज़ कम, इन्जॉय, सेलिब्रेट, एंड यू विल फील दैट दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट ऑल टुगेदर। आगे चलते हैं अमितेश जी, क्योंकि अब समय का अभाव हो रहा है, हमें इसको बंद करना पड़ेगा। और आपने कितने जवाब आ चुके हैं, आपने देखा होगा।
0: हाँ, 5 लोगों ने जब आंसर दिया है, पर जो सबसे पहले जिन्होंने आंसर दिया है वो हैं ऋचा रंजन जी।
1: तो स्वागत है ऋचा रंजन जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आप जीत चुकी हैं डांडिया के लिए 2 टिकट। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको 2 टिकट उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अमितेश जी, आप जहाँ क्या कि हम सब आप अंतिम पड़ाव पर छे प्रोग्राम के, तो कुछ रैपिड एक्शन, रैपिड फायर जगह हम वहाँ से प्रश्न करें, क्या कि एक उत्तर देना है बहुत शीघ्र उत्तर देना है बहुत आवश्यक छे। तो यदि हम पूछिए कि एक टा छोट वाक्य में अगर मिथिला कला के विषय में कुछ कहल जाए,
2: ये मनुष्य, दैवी शक्ति और प्रकृति के संयोग छे।
1: वाह, बहुत बढ़िया। कोनो जन नव पीढ़ी छथि, नया पीढ़ी जे छथि
2: जी,
1: नया पीढ़ी के लेल यदि अहाँ के कोनो संदेश हुए, जे नया पीढ़ी के की संदेश है अहाँ से?
2: नया पीढ़ी के हम यह संदेश देवे चाहब कि अपन कल्चर, अपन कला के जगेरना करे चाहिए और अपन घर से हर एक एक आदमी जो एकटा कल्चर एडॉप्ट करथिन तो वो अपन से कल्चर के स्प्रेड कर सके छी।
1: और तब जना कहलों कि हम सब धीरे धीरे समय के अंतिम पड़ाव पर बढ़ रहल छी तो सब मित्रगण आरो जतेक जतेक अपने सब श्रोतागण छी हुनका सबके लेल किछु शब्द आइ सुनल भेटल। अगला बेर से हम प्रयास करब जे शब्द में किछु और एडिशन हो जाएत। और मिथिला में एक बहुत बढ़िया चीज छे जकरा कहल जाए छे फकरा, जो दोसर ठमा नहीं भेटे छे, हालांकि सबको ओकर नाम अलग अलग छे, हिंदी में कहावत कहल जाए छे, मुहावरा कहल जाए छे, लेकिन मैथिली में बहुत अलगे तरह के एकटा तरीका छे बातचीत कर के। तो हमरा याद है जहन हम सब छोट रहिए तो हमर दाई बजत रहथिन बहुत तरह के चीज सब, जो पहिने तब नहीं बुझ में आवे, जहन कनी नम्हर भेलहुँ तो पता चलल जे फकरा के मतलब की छे। तो जना गाम के लेके ओझा बता, ओझा के लेके गाम बता, के बता सके छे के मतलब, हाँ अपन उत्तर जे छे से भेजू 04263952998 पर। अइ तरह के बहुत प्रकार के फकरा अहाँ सबके सुनल लेल भेटत, लेकिन ओहिसँ पहिने एकटा गीत डेडिकेटेड अछि हमर कनिया के लेल, जे जे बहुत अहाँ सबके गीत सुनब तो पता चलत जे एकदम सटीक जे छै अइ प्रकार के गाना हिनका ऊपर बैसे छनि, तऽ हिनका हम डेडिकेट करै छियनि।

0: Radio 2000 98.5 FM Community Program
1: सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2000 98.5 FM।
0: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
1: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में. आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं.
0: Radio 2098.5 FM, Multicultural Radio.
2: आज रविवार, युगात 5126, कलयुग विक्रम संवत 2083, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा 27 सितंबर 2026 है. दर्पण के सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम की नमस्ते. इस सप्ताह के समाचार इस प्रकार हैं. गणेश चतुर्थी पर देश भर में बप्पा की पूजा हुई, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर एंटार्क्टिका में मौजूद भारतीय वैज्ञानिकों ने भी इस त्यौहार को खास अंदाज में मनाया. यहाँ वैज्ञानिकों ने बर्फ से भगवान गणेश की प्रतिमा बनाई, उसकी पूजा की और फिर उसी में विसर्जन की रस्म भी निभाई. इस अनोखे सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुज्जैनी थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान अचानक बम फोड़े जाने के से हड़कंप मच गया. फतेहपुर गांव के पास यात्रा को कथित तौर पर करीब 2 दर्जन लोगों ने घेर लिया. पहले फायरिंग और बमबाजी हुई, जिससे यात्रा में शामिल लोगों में भगदड़ मच गई. इसके बाद कथित तौर पर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी लेकर कुछ लोगों ने भक्तों के साथ मारपीट शुरू कर दी. विसर्जन यात्रा में बमबाजी और मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. आरोपों की पुष्टि और हमले में शामिल लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई पुलिस जांच के आधार पर होगी. माफ कीजिएगा. चुनाव आयोग के अंदरूनी मतभेद को मीडिया में के खुलासे ने उजागर कर दिया, लेकिन आयोग की सफाई ने कई दावों की ओर धार कुंद कर दी. खास तौर पर उन आरोपों की, जब ये कहा जा रहा था कि पूरा चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, लेकिन इस खुलासे से कई गंभीर सवाल अंतरित छोड़ दिए. जैसे चुनाव आयुक्तों की मर्जी के बिना फैसले हुए तो उन्होंने इसकी शिकायत राष्ट्रपति से क्यों नहीं की. हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट ने चुनाव आयोग में अंदरूनी कामकाज पर एक गंभीर बहस छेड़ दी है. रिपोर्ट ने दावा किया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान देश भर में ड्राफ्ट रोल से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए और इसी अवधि में आयोग के 2 सदस्य सुखबीर सिंह सिंधु और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज की. यह आपत्तियां ECI नेट सॉफ्टवेयर के कथित सेंट्रलाइजेशन फॉर्म 6 में बदलाव पर, पश्चिम बंगाल में अपीलों और प्रशासनिक आदेशों जैसे मुद्दों पर थी. रिपोर्ट का मूल मैसेज यह था कि बहुमत वाले आयुक्त कई फैसलों से अनजान रखे गए, जिससे संस्था की प्रकृति और वैधानिक अधिकारों का पर सवाल उठा. सिक्किम में गुरुवार 24 सितंबर की रात को भारी लैंडस्लाइड हो गई. घटना के बाद पहाड़ी का मलबा तेजी से गांव की तरफ बहता हुआ पहुंचा. लैंडस्लाइड की वजह से कई घर टूट गए, जिससे काफी नुकसान हुआ. जानकारी और मुताबिक सिक्किम के रिम्बी गांव में इस लैंडस्लाइड ने बड़ी तबाही मचाई. पीएम मोदी ने नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया. यह कार्यक्रम भारतीय जनसंघ के नेता और बीजेपी के खिलाफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 10वीं जयंती के मौके पर आयोजित किया गया. भक्ति संगीत कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी दर्शकों के बीच बैठे और कलाकारों के साथ मिलकर राम भजन के गीत गाते दिखे और तालियां बजाईं. पीएम मोदी ने इस साल की शुरुआत में अपने मन की बात कार्यक्रम में भजन क्लबिंग ट्रेंड के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि युवाओं में बढ़ती दिलचस्पी आध्यात्मिकता, संस्कृति और आधुनिकता का मिला जुला रूप है। उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रमों के माहौल की तुलना ग्लोबल कॉन्सर्ट से भी की थी। तब से यह ट्रेंड भारत के कई शहरों में होने वाले कार्यक्रम में देखा गया है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए DADR यानी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारियों के एक बड़े राष्ट्रीय संगठन ने 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली महंगाई भत्ते को लेकर सरकार को पत्र लिखा है। इस पत्र में त्योहारों से पहले DADR बढ़ोतरी के ऐलान की मांग की गई है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार उनके इस पत्र का पर विचार करेगी और दुर्गा पूजा दशहरा से पहले DADR हाइक का ऐलान कर सकती है। भुज भुरानी अमृत भारत एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने की मंजूरी दे दी है। यह ट्रेन 5 राज्यों को जोड़ते हुए 2532 किलोमीटर का सफर तय करेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्र और निर्माण प्रभारी गोपाल राव को आरोपी नहीं बनाया गया। तीनों को सरकारी गवाह बनाया गया है। चार्जशीट में 133 करोड़ का जिक्र है। 400 पेज के आरोप पत्र और 101 केस डायरी में पर्चे में भी इनमें शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने भारत से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हुए पाकिस्तान का पक्ष रखा। उन्होंने मई 2025 में हुए भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय दोनों परमाणु संपन्न देश बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़े थे और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय पर हस्तक्षेप से हालात और नहीं बिगड़े। इसके साथ सिंधु जल संधि को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया गया और पाकिस्तान के हिस्से के पानी में किसी भी तरह की बाधा को युद्ध जैसी कार्रवाई बताया गया। अमेरिकी कांग्रेस ने 16 सितंबर को लिंसे ओग्राम सैंक्शनिंग रशिया और ईरान एक्ट को 2062 के मुकाबले 149 मतों से पास किया। अमेरिकी सेनेट ने इस बिल को भारी बहुमत से 7 अगस्त को पास किया था। अब ट्रंप को भारत पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल गया है। इस बिल से पास होने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि चीन और भारत को अपना रवैया सुधारना चाहिए और तेल गैस कहीं और से खरीदना चाहिए। महाराष्ट्र के जलगांव जिले की जामनेर MIDC में हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस का बॉटलिंग प्लांट लगाने की आयोजना है। फिलहाल यह प्रोजेक्ट केवल कागजों पर है और कारखाने का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन पानी, पर्यावरण और रोजगार को लेकर इस प्रोजेक्ट पर विवाद शुरू हो गया है। एक तरफ स्थानीय कार्यकर्ता और किसान विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राज्य सरकार का दावा है कि इससे बड़ा निवेश आएगा और रोजगार के भी मौके बढ़ेंगे। खेल समाचारों में एशियन गेम्स में भारतीय निशानेबाज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। सरम बरवाल ने मेंस मैराथन में 44 सालों के पदक के इंतजार को खत्म किया और 2:11.37 का समय लेकर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। फिल्म समीक्षा में करीब 5 दशक पहले दुनिया छोड़ चुके एक संत उत्तराखंड की पहाड़ियों में बना एक आश्रम और इस संत के जीवन से प्रेरित होकर फिल्म बनी हनुमान अंश। फिल्म की शुरुआत हिंदी फिल्मों जैसी नहीं थी, मगर फिल्म इस समय सुर्खियों में शुमार है और मशहूर फिल्म आलोचक तरुण आदर्श के मुताबिक फिल्म कुल रेवेन्यू के मामले में 300 करोड़ के निकट पहुंच गई है। फिल्म का पैमाना और उसकी कमाई इसलिए भी ध्यान खींचती है क्योंकि बीबीसी न्यूज हिंदी से बातचीत के दौरान इस फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने फिल्म की लागत को 2 करोड़ रुपए से भी कम बताया। नीप करोरी बाबा का किरदार शोभिनव सत्य ने निभाया। उन्होंने किरदार को बखूबी निभाया और जिस तरह से दर्शकों का रिस्पॉन्स आया है उससे पता चलता है कि उन्होंने इस किरदार को बड़े ही शानदार तरीके से निभाया है। स्क्रीन प्ले पर इतनी सफाई से काम हुआ है कि आपको कहानी के उस दौर का एहसास होने लगता है। इस फिल्म का एक गाना इंटरनेट पर वायरल है जिसे सुनील सोदी ने गाया। वे दोनों आंखों से दृष्टिहीन हैं। एक इंटरव्यू के अनुसार सुनील की आंखों के इलाज के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मदद का आश्वासन दिया है। भक्ति, संतों की जिंदगी और आस्था पर बनी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, जैसे कि 2025 में रिलीज हुई महाअवतार नरसिंह ने बॉक्स ऑफिस पर 325 करोड़ की कमाई की थी। कैंची धाम की लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने का फैसला लिया है। इससे यह पता चलता है कि कैंची धाम के प्रति आकर्षण अब सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक घटना की ही नहीं रह गई बल्कि प्रशासन और टूरिस्ट प्लानिंग का भी विषय बन चुकी है। दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 1,44,758 रुपए प्रति 10 ग्राम है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं: अमरीकी डॉलर 95 रुपए 82 पैसे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 67 रुपए 56 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए।
3: श्रोताओं, आज आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारे साथ पूनम जी की आवाज आपने सुनी ली है, मधुर आवाज में बोलूंगा, और हमारी नंदिनी आज आ गई है वापस।
2: वेलकम बैक नंदिनी।
3: सी वॉज यू नो जो मैं मुझे तो डर लग रहा था जब बोला कि मैं यूरोप जा रही हूँ, मैंने कहा कि आई मार लूज दिस गर्ल, बट शी इज बैक, सो वेलकम बैक नंदिनी।
4: थैंक यू। नमस्ते श्वेता, थैंक यू फॉर हैविंग मी बैक प्रोग्राम पे। अब हम वापस
3: जी, तो ये यंग लोगों का भरोसा नहीं होता है, यू नो कब उड़ जाए। तो एक और हमारे साथ में है, वो आज वो हमारे साथ में मेहमान है। आज हमारे साथ में प्रदीप जी मेहमान है, वो लेखक की तरीके से हैं श्रोताओं। तो प्रदीप कुमार सिन्हा लेखक, तो उन्होंने एक किताब लिखी है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं तो बहुत ही प्रभावित भी हुआ हूँ और मेरी भी आशाएं जगें कि मैं खुद कुछ लिखना चाह रहा था, तो शायद मेरे लिए भी बड़ा अच्छा होगा कि मैं कुछ उनसे जान पाऊँ, सीख पाऊँ, और अपने श्रोताओं को भी मैं चाहूँगा कि वो भी सीखें उनसे कि कैसे अपने यू नो यादों को, अपने अनुभवों को एक किताब में संजोया जाए। श्रोताओं, जैसे कि हमने लिखा है अपने उसमें, तो थोड़ी देर के बाद में हमारे एक और मेहमान आएंगे, वो सात्विक या सनातन फूड के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ होती है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो पूनम जी,
2: जी
3: आज का विचार क्या है हमारे श्रोताओं के लिए?
2: जी श्रोताओं, आज के विचार का टाइटल है खूबसूरती और व्यवहार। हम सब लोग खूबसूरती से पहले प्रभावित होते हैं और बाद में व्यवहार पर सोचते हैं।
3: बिल्कुल सही बोला है।
2: तो हो सकता है कि आपको किसी की खूबसूरती पसंद आ जाए और उससे प्यार हो जाए, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, आखिर में आपको उसके चरित्र और व्यवहार के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, ना कि उसकी खूबसूरती के साथ। खूबसूरती आज है कल नहीं, लेकिन उसका व्यवहार हमेशा वैसा ही रहेगा जैसे पहले दिन था, क्योंकि इंसान का सब कुछ बदल सकता है लेकिन नेचर नहीं। इसलिए इंसान को उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से मान और सम्मान दे।
3: क्या बात, बहुत प्रैक्टिकल बात बोली है आज आपने।
2: सुंदर है ये विचार जी।
3: तो एक भजन सुना जाए, यह AI वाला भजन है
2: ओके
3: और आप देखिएगा मैं मुझे बताना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी सुनिए वो आप बताइए कि कैसा लगा आपको
2: श्योर sure.

0: श्रोताओं, ये भजन आपको कैसा लगा? बहुत ही ईमानदारी से हमें बताइए। अगर नहीं भी अच्छा लगा है तो ज़रूर मुझे बताइए। ये फुल्ली AI जनरेटेड भजन था। मैं अभी आपको एक परिचय करा रहा हूँ हमारे शौर्य जी, शौर्य सक्सेना जी उनका पूरा नाम है। शौर्य जी, दर्पण रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते यतीन जी।
0: शौर्य जी, आपने ये भजन सुना, आपको कैसा लगा?
1: ये भजन तो बहुत ही बढ़िया है। और हमने भी जो है कुछ जो है AI पे ट्राई करा है। हमने भी अच्छा भजन बनाने का, भजन की लिरिक्स बजाने का, उसकी म्यूजिक बनाने का। अभी तो अभी AI जो है इसका अच्छे तरीके से अगर यूज करा जाए तो ये सबकी बहुत हेल्प कर सकता है।
0: ये अच्छे तरीका क्या होता है?
1: इसको जो है आप ये सोचिए कि अपनी क्रिएटिव उससे आप ऐड करें। तो एक होता है कि आप जो है एक म्यूजिक आर्टिस्ट है, वो अपना जो है म्यूजिक बना रहे हैं, ठीक है। आप बनाते हो, आपको नहीं पसंद आता है, आप फिर सोचते हो कि चार लोगों से फीडबैक लेते हो कि आप बताओ। AI में आप अपना म्यूजिक डालो, आपको तुरंत फीडबैक मिलता है। तो जो आपका फीडबैक साइकिल है बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपको फीडबैक मिलेगा, आप उसे फटाक से चेंज करो, आप उसे और अच्छा करो, आप उसे फिर फीडबैक मिलेगा। तो आप उससे जो है आपका और रीच भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज AI के अंदर ऑलरेडी इतने ज्यादा मॉडल्स हैं, दुनिया भर की म्यूजिक उसके अंदर है। तो उससे आपको बहुत अच्छा अच्छा जो है चेंज हो जाता है। तो उसके अंदर उनके जो डेटा स्टोर है उनके अंदर दुनिया भर का म्यूजिक है। तो आपको फटाक से जो है आपका सपना आप बनाइए और आपको फीडबैक मिलेगा, तो वो बहुत अच्छा
0: है। अच्छा, ये बात मालूम थे लेकिन मैं इस तरीके से उसको नहीं समझ रहा था। वेरी गुड पॉइंट। अच्छा सौर्य जी, सॉरी मैं आपको सीधे डिस्कशन में लेके गया, थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जी मेरा नाम सौर्य सक्सेना है और मेरा एक जो है हमारा एक म्यूजिक ग्रुप है, उसका नाम है सुर वाइब्स। आप उसको जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। अगर आप सर्च करना चाहें तो survives.syd
0: SURVIBES
1: वाइब्स। सुर वाइब्स, तो ये हमारा ग्रुप है।
0: आपने भी हिंदी और अंग्रेजी का मिक्स करा है,
2: फ्यूजन कर दिया।
0: आपने अगर मैं आपसे, चलो ऐसे ही पूछ लेते हैं कि आपने ऐसा क्यों करा? आपने हिंदी में, जैसे लोगों की आकांक्षाएं ऐसे ही होते हैं कि भाई हिंदी में होना चाहिए, वो मे बी यू नो सरल हिंदी और संस्कृत और ऐसा हो नाम, जो आपने यू नो बिल्कुल इंग्लिश उसमें कर दिया सुर वाइब्स करके। किसी लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि वाइब्स का मतलब क्या होता है, ऐसा आपने क्यों रखा?
1: देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो अभी जो है हम लोग जो है दोनों चीजें, पहले हम लोग अपना कल्चर जो इंडिया से हमारा है सनातन कल्चर, ओके, उससे काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, उसको हम जो है मॉडर्न वे में कैसे लेके आए। तो वी वॉन्टेड टू कनेक्ट विद बोथ द ऑडियंसेस, जो हमारे ट्रेडिशनल ऑडियंस है और जो हमारी न्यू जेन जी यंग ऑडियंस है, तो दोनों से हम कनेक्ट करना चाहते थे। तो जो हमारा म्यूजिक भी जो है वो ऐसा है कि वो दोनों लोगों के लिए है, ओके। तो जैसे अभी हम कहीं भी जाके अगर भजन वगैरह भी करते हैं तो हम ट्रेडिशनल वे तो है ही है, बट वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ भजन क्लबिंग जैसे। तो उससे क्या होता है, जो अपनी जेन जी है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसको जो है वो लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा नेम ऐसा रखा था कि इट रिलेट्स टू बोथ ऑफ देम, या सो दे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आइडेंटिटी अगर रिलेट होती है सबसे तो दे गेट अट्रैक्टेड टू
0: इट। सही बात है, एसोसिएट होना चाहते हैं। सही बात। तो ये भजन क्लबिंग का जैसे आपने बोला है, तो आप ये रेगुलर शोज करते हैं, कैसे है आप, कैसा करते हैं आपको?
1: तो भजन क्लबिंग जो है अभी इनफैक्ट लाइक सभी ने देखा होगा, अभी तो इंडिया में बहुत बड़ी लहर चल रही है भजन क्लबिंग की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी अभी रिसेंटली दिस वीक जो है एक काफी बड़े इवेंट में गए थे। सो सी हम लोग जो है ट्रेडिशनल भजन तो हम लोग कब से करते आ रहे हैं, मंदिरों में, घरों में पूजा होती है, हर बार होता है, हमेशा हमेशा ही भजन होते हैं, हम लोगों ने बचपन से देखा है भजन होते हैं। इसको ही जो है हम लोग, जैसे अब हम ऑस्ट्रेलिया में हैं तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हम कैसे कनेक्ट करें अपने कल्चर से, तो इट द सेम भजन बट उसमें हमने थोड़े मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज करें, जैसे कि गिटार हो गया, पर्कशन नए वाले हो गए, ड्रम्स वगैरह हो गए, उसको थोड़ा सा लाइवली और लाइवली करा, उसको खूब अच्छी तरीके तेजी से परफॉर्म करो तो पीपल कनेक्ट, आप आइए वहां पे डांस करिए, तो भजन आप सुनने के लिए नहीं है सर, भजन आप डांस करने के लिए,
0: उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, अगर उस तरीके से बोले जाए, जब वो जाए वहां पे तो लगे कि आपको अगर थोड़ा नाचना भी है, अगर पैर आपके अपने आप ही नाचने लगे, मैं समझता हूँ कि वो फिर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, नहीं?
1: जी जी जी
0: हम लोग जो पैर थिरक रहे हैं आपके है।
1: है? जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत जरूरी है वो जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप देखिए आज की डेट में जो यंगस्टर्स हैं अपने, उनको हम लोग डिवोशन भगवान से कैसे जोड़ें, ठीक है, तो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। सो और नेक्स्ट जो है यंगस्टर्स वगैरह हैं, वो लोग आते हैं वैसे ही पार्टी कर रहे हो, तो आप पार्टी जो है भजन क्लबिंग की तरह आप करो आप पार्टी।
0: जी अच्छा ये बताइए आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा उसके बारे में बताइए।
1: तो अभी हम लोग जो है अक्टूबर में हम लोग होम बुश बॉयज हाई स्कूल में एवरी फ्राइडे फ्रॉम 9th ऑफ अक्टूबर till 31st of October, we are going to do bhajan clubbing event in the evenings from 6:30 PM to 8:30 PM. तो ये जो है we want कि सब लोग आए अपने family, friends, बच्चों के साथ में, we want to showcase कि bhajan clubbing किस तरीके से करते हैं, and people will enjoy, बहुत ज्यादा enjoyment होगा वहां पे और भगवान से भी जुड़ेंगे, तो वो जो है मतलब इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, तो आप आओ वहां पर अपनी फैमिली के साथ आएंगे, भगवान के साथ कनेक्ट करेंगे और सोशलाइज भी करेंगे जो है,
0: तो इसमें
1: और वैसे भी अभी जो है फेस्टिवल सीजन आ रहा है, हम लोग का नवरात्रे है, दिवाली आ रहा है, तो हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट थीम्स पे करने वाले हैं, तो हम लोग अभी सोशल मीडिया पे वील सेंड आउट डिटेल्स एज वेल ऑफ दीज इवेंट्स, बट और मेरा फोन नंबर है, हम लोग जो है वहां पर सेवा भी देख रहे हैं, वहां पे भोजन प्रसाद भी होगा हम लोग का इवनिंग में, और हम लोग को वॉलंटियर्स भी चाहिए, तो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस प्लीज कॉन्टेक्ट मी, मेरा फोन नंबर है 0470371242।
2: जी मैं यहाँ कुछ कहना चाहूंगी।
0: पूनम जी हमारे कुछ पूछना चाहते हैं।
2: नहीं मैं शौर्य जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि जैसे कि इन्होंने भजन क्लबिंग, ये भी हिंदी और इंग्लिश के दो शब्द यूज, अब यंगस्टर्स को इनवाइट करने के लिए अगर आप कहें भजन संस्था या भजन की एक शाम या खाली भजनों भरी शाम कुछ इस तरह का नाम रख, तो वो सीधा रिलेट करेंगे कि भाई मम्मी पापा जाएंगे, बड़े बुजुर्ग जाएंगे, पर जब वर्ड क्लबिंग ज्वाइन कर दिया तो शायद ये वर्ड यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा, और इवन हमारे अब जब हम भजन इस कलयुग के माहौल में कहा गया है कि कीर्तन ही सबसे आसान तरीका है माल ईश्वर को पाने का, तो शौर्य जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
1: तो थैंक यू। तो
0: मैं अपनी नजरी से पूछे थे वो क्या सोचते हैं,
1: हॉर्स
0: माउथ है,
3: जेन जी ओपिनियन, हाँ नहीं मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लाइक ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी है, तो कि जैसे कहा गया है कि लाइक वो क्लबिंग नाम रखने से थोड़ा सा अपील करता है यंगर जनरेशन को, और वो नहीं लगता कि हाँ कि लाइक मेरे एज ग्रुप के भी वहाँ पर लोग होंगे, मैं उनसे रिलेट कर पाऊँगी, बात कर पाऊँगी, और उससे कनेक्शन बढ़ता है, कम्युनिटी उसी से बढ़ती है, जब आप जिन लोगों के साथ जा रहे हो उनके साथ आप फ्रेंडशिप्स बना सको या फिर रेगुलर उसके साथ मीटिंग कर सको, तो आई थिंक कि उस तरीके से कनेक्शंस भी बढ़ते हैं और फिर ज़्यादा वो क्लोसिविटी भी आती है अपने रिलीजन वगैरह से।
0: लेकिन इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जो प्रदीप जी, अब आपको मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ,
4: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: आप जैसे लोग क्या सोचेंगे कि भाई इसमें मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि
2: वहाँ सारे यंगस्टर्स हैं तो मैं क्या करूँगा।
0: एग्जैक्टली
4: नहीं तो इसका इलाज ये है इतेंद्र जी कि बड़े लोग भी जाएं, यंग लोग भी जाएं, मिक्सिंग तो जरूरी है ना बच्चों और बड़ों में, बच्चों और बड़ों में जब तक मिक्सिंग नहीं होगी तब तक मजा नहीं है।
0: एग्जैक्टली
4: अब आप बड़ों को,
0: लेकिन ये है ना प्रश्न ये था प्रदीप जी की, अगर मान लो समझो आप ही सुन रहे हैं और आपको यार ये तो लगता है कि यंग लोगों का है, मैं इसमें मेरा इसमें क्या काम?
4: आपको अपना सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा अरे इतना अट्रैक्टिव है, बच्चे लोग आएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा,
2: नहीं हम जा रहे हैं, चलो बच्चों तुम भी चलो।
4: नहीं इसे इस तरह से करिए, बच्चे लोग कहें कि चलिए मम्मी पापा आप भी
2: चलिए, हाँ दोनों तरफ से,
0: हम दोनों के लिए है,
4: हम सब के लिए।
2: ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें बड़े भी शामिल हो सकते हैं और बच्चे भी
3: यंगस्टर्स भी। पेरेंट्स बोलते हैं ना कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं लेकिन ये तुम्हारे लोगों एज ग्रुप के लिए भी फंक्शन है, हाँ, तो वो ज्यादा अपील होंगे। तो कि अगर आप सीधा बच्चों को ये बोलोगे कि हाँ आज जैसे इवेंट में जाना है वहाँ पर भजन सुनेंगे, तो इतने सारे बच्चे नहीं होंगे जो हाथ खड़ा करके ऐसे बोलेंगे हाँ मुझे जाना है। पर जब आप ये बोलोगे कि हाँ वहाँ पर जैसे बहुत सारे एज तुम्हारे एज ग्रुप के बच्चे आ रहे हैं, ठीक है तुम वहाँ पर मिल पाओगे, बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, तो ज्यादा वो कनेक्ट होगा।
0: मोदी जी ने इसका
2: जी ऑलरेडी आगवान कर दिया,
0: मोदी जी ने ऑलरेडी वो कर दिया है, वो अपनी वो भी लेके गए थे डपली,
2: जी डपली लेकर वो वीडियो बहुत
0: वो भी लेके गए थे। तो सौर्य जी प्रोग्राम के बारे में दोबारा से बता दीजिए, और अगर श्रोताओं कोई वॉलंटरी भी बनना चाहता है, कुछ पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो भी आप सौर्य जी को संपर्क कर सकते हैं। तो सौर्य जी दोबारा से प्रोग्राम और अपना फोन नंबर बताएंगे तो अच्छा है।
1: जी, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो होमबुश बॉयज हाई स्कूल में एवरी फ्राइडे स्टार्टिंग फ्रॉम 9th of October फॉर 4 weeks है, फ्रॉम 6:30 PM टू 8:30 PM। और वहां पर हम लोग भजन क्लबिंग के साथ साथ थोड़ी सी सेवा डिवोशनल म्यूजिक भी होगा, प्लस भोजन प्रसाद भी होगा। सो प्लीज अगर कोई भी सेवा करना चाहता है आगे आके तो प्लीज मुझसे कॉन्टेक्ट करें। मेरा फोन नंबर है 0470-371-242। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएट दिस मेगा इवेंट इन होमबुश, और वहां पे जो है हम लोग ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन सोसाइटी प्लस जो हमारा एग्जिस्टिंग, मैं आपका डिस्कशन सुन रहा था यतीन जी, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग हमारी जनरेशन है, यस सब लोग मतलब वहां पे जो है एवरीबॉडी इट्स एवरीबॉडी एंजॉयज, मतलब हम लोग उसमें देखा है, हमने पेरेंट्स के साथ में किड्स डांस करते हैं।
0: ये हो ना पूनम जी, आपको
2: आखिरी सवाल शौर्य जी कि भजन कौन गाएगा, इज इट जस्ट लाइक आप
0: लाइव होगा
2: रिकॉर्डिंग लाइव हो,
1: तो ये जो है लाइव परफॉर्मेंस होगी पूनम जी, तो हम लोग गाएंगे प्लस वहां पे जो लोग आएंगे उनको भी मौका मिलेगा। तो ये जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक बस गा रहे हैं, तो बट द होल पॉइंट इज कि सब लोग मिलके जब गाते हैं ना तो एक एनर्जी अलग आती है और कनेक्शन जो होता है आप भगवान के साथ फील कर सकते हो वहां पे आप। फिर
2: बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक,
4: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: धन्यवाद सौर्य जी आपके समय के लिए, एंड वी विश यू रियली ऑल द बेस्ट। भगवान आपको जो है ना इसके माध्यम से, पूनम जी ने मुझे आज पहली बार मालूम पड़ा कि भजन के माध्यम से भी भगवान को पाया जा सकता है
2: जी, तो कलयुग में यही कहा गया है,
0: टेस्ट थोड़ा सा बदल गया तो वरना मेरे जैसे लोगों को तो कोई चांस ही नहीं था। तो सौर्य जी अगेन धन्यवाद, आपका रविवार अच्छा हो, हम ऐसी कामना करते हैं।
5: दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300-908-681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomcare.org.au। धन्यवाद।

0: Curry Master's complete curry mix available at all leading spice shops.
1: श्रोताओं, अब हमारा समय आ गया, जैसे कि हमने बोला है, हमारे प्रदीप जी द लेखक, जिसको कह सकते हैं राइटर प्रदीप जी, आज मैं आपका दर्पण रेडियो में स्वागत कर रहा हूँ. दर्पण रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रदीप कुमार सिन्हा द ऑथर.
2: थैंक यू यतिंदर जी, और दर्पण के सभी सुनने वालों को मेरा सप्रेम नमस्कार.
1: प्रदीप जी, जब मैंने आपका वो पहली बार जब आपने शेयर करी अपनी किताब के बारे में, तो पहला तो ये आया कि अरे वाह, इस इतने छुपे रस्म आपने कह लिए, भनक नहीं मालूम, भनक भी नहीं पड़ी मालूम, और वो यू नो इतनी बड़ी आपने किताब लिख दी. मैं खुद लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं हो पा रहा है. लेकिन तो पहला प्रश्न मेरा यही होगा, मेरे आप जो है ना ये उलझन को कैसे आपने लिख ली?
2: अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले कि हम किताब के बारे में बात करें, बुक के बारे में बात करें, ऐसा है कि आप ज़रूर लिख सकते हैं लेकिन उसके लिए थोड़ी पेशेंस चाहिए. पेशेंस इस तरह से चाहिए कि आप जब आपको मौका लगे अपना छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते जाइए.
1: अच्छा,
2: एक पेज लिख लीजिए, आधा पेज लिख दीजिए, दो लाइन लिख दीजिए, फिर उसे थोड़ा सा एक्सपेंड करिए, फिर आप दूसरे दिन नहीं तो अगले हफ्ते लिखिए. इस तरह से एक साल दो साल में आपकी तैयारी हो जाएगी, काफ़ी मटेरियल होगा, फिर आप उसे कंपाइल कर लीजिए. देखिए, ऐसा है कि एक डिस्क्लोज़र मुझे ये भी करना है कि जो बुक है ये AI की हेल्प से कंपाइल की गई है. इसकी जो लैंग्वेज की पॉलिशिंग हुई है वो भी AI के थ्रू हुई है. तो ये है कि अगर आपके पास छोटे छोटे एपिसोड्स हैं, आपके पास जो आपके दिमाग में आता है वो अगर आप लिखेंगे, उसे आप कंपाइल कर सकते हैं. आजकल बड़ी आसानी से कंपाइल करके आप उसकी जो लैंग्वेज, तो वो थोड़ी सी रिफ़ाइन करिए और फिर उसे देखिए, उसे पढ़िए, उसको चेंज करिए आपको जैसा लगता है, एंड आप उसे पब्लिश कर सकते हैं. इस तरह से आप लिख सकते हैं. लेकिन अगर आप सोचें कि मैं इस सीजन राइटर की तरह आप कहीं अकेले में जाकर एक Airbnb में रहकर जहाँ समुंदर के किनारे आप बैठकर लिखेंगे, तो ये हम लोगों के लिए नहीं पॉसिबल. लेकिन आप छोटा छोटा लिखकर,
3: तो क्या मैं ये समझूं प्रदीप जी के जर्नलिंग उसकी शुरुआत है, स्टार्ट जर्नलिंग?
2: यस, आप अपनी डायरी लिखिए.
3: जी जी,
2: डायरी में
3: रोज के इवेंट्स,
2: रोज के इवेंट्स लिखिए. आप उसमें अपने विचार लिखिए, आपको किसी से आप मिले आपको कैसा लगा. जैसे कि आप कभी किसी से मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे आप बात करना पसंद नहीं करते हैं. ये सब कहाँ से आता है, इस बात की चर्चा भी इस मेरी किताब में है कि सब कहाँ से आता है. इस बात की चर्चा भी इस मेरी किताब में है कि इस

0: मंगल होता है। मैं ऐसे मानता हूँ, एक और चीज़ है कि हर आदमी जीती जागती किताब है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: हर एक के पीछे कोई ना कोई कहानी है,
1: हम सब की कहानी अलग अलग है।
2: बिल्कुल,
0: हर आदमी अपने संस्मरण, अपने जीवन के अनुभव वो लिख सकता है, और यू डोंट नो कि किसके काम में क्या जाए।
1: कभी कभी इंद्र जी ऐसा है कि आप आज घर जाइएगा तो एक पेज जरूर लिख दीजिएगा, फिर एक दो साल के बाद हम आपकी किताब का विमोचन करेंगे
2: और फिर आपके सीटें पलट जाएंगी।
0: अब जैसे एक में एक शेयर चलो कर ही लेता हूँ, अब ये शायद आपसे मैं हेल्प चाहता हूँ। दो महीने पहले एक मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला, मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा मेरे साथ। वो ये कॉम्प्लीमेंट था कि तो हमारे नए क्लाइंट हैं, काफ़ी बड़े क्लाइंट होटलियर हैं वो, तो वो भी भारतीय हैं। तो उन्होंने कहा कि या इतना जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैंने समझा कि ना फीडबैक टिपिकल जो होता है कि ना, मैंने कहा गो हैड एंड डू इट। कहने लगे कि मैंने एक वो स्लीप अपेनिया मशीन आती जो सोने के लिए आती है वो लेना बंद कर दिया है। मैंने कहा ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़े पॉज के बाद वो कहते हैं कि ये आपकी वजह से हुआ है। मैंने कहा कि मैं अकाउंटेंट हूँ, बिफोर यू फॉरगेट, और ये मैंने कहा मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ भाई। देन ही सेड सीरियस मोड की जब से आपने मेरा काम संभाला है आई कैन स्लीप पीसफुली। ऐसा मैंने लाखों डॉलर और ये चीज़ एक कंप्लीमेंट मेरे लिए, मतलब आप समझ सकते हैं। तो उस दिन मुझे फिर ये एहसास हुआ कि अकाउंटेंट का रोल कितना बड़ा है समाज में। मैं कई तरीके से उसको कर रहा था लेकिन उस दिन वो टेस्टिमनी की
1: तरीके। अच्छा, यतीन्द्र जी इसका एक और एंगल है, उन्होंने आप पर पूरा भरोसा दिखाया, पूरा, क्योंकि आप अच्छी तरह से काम करते
0: ठीक
1: हैं। अब यह है कि आपकी बात आपने रेडियो पर बताई, आपकी बात और लोग भी सुनेंगे तो उन्हें भी लगेगा मैं भी इसी तरह से काम क्यों ना करूं कि मुझे भी इस तरह का कम्प्लीमेंट मिले। तो ये जो इस तरह की पॉजिटिव बातें हैं ये बहुत दूर तक जाती हैं। आपने इसे शेयर किया, बड़ी अच्छी बात है, और इसका इसके सब हर बात के रिपरकशंस होते हैं, इसका भी जिक्र इस किताब में है।
0: क्या बात है, क्या बात। तो हाँ नंदिनी जी आप बताओ आप क्या सोचते हैं।
3: मैं एक्चुअली ना थोड़ी सी बुक के बारे में और पूछना चाहूँगी कि ये लाइक कैसे इंस्पायर हो कि आपने क्यों स्टार्ट करा था बुक लिखना, और लाइक किसके बारे में एक्चुअली बुक।
1: बड़ा अच्छा प्रश्न है। या ऐसा है कि आपने जो यतीन्द्र जी पूछने वाले थे आपने पूछ लिया, बढ़िया बात है। मेरा शुरू से मेरा दिमाग कुछ इस तरह से चलता है कि थोड़ा सा अलग करना चाहिए, कुछ अलग करो, बहुत दिनों से प्रयास ये था। फिर मैंने जो इस तरह की बुक्स काफ़ी पढ़ी कि स्पिरिचुअल बुक्स कि मरने के बाद क्या होता है जैसे कि कई चीज़ें हैं जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में आपको पता होगा।
3: हाँ जी,
1: लोगों को होता है, आपको पता होगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है तो वो अपने पास्ट लाइफ में चले जाती हैं, और इसके काफ़ी ऑथेंटिक प्रूफ हैं कि पास्ट लाइफ तो है ही। अच्छा, फिर इसके साथ साथ ये मुझे लगा कि कुछ इस तरह से किया जाए कि सारी कहानियाँ लिखी जाती हैं जन्म हुआ और मृत्यु हुई उसके बीच की होती हैं, क्यों ना हम इसे उल्टा कर दें कि मरने के बाद और अगले जन्म तक क्या होता है। तो इसमें मैंने सोचा कि सिर्फ ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख दीजिए उसमें।
3: बिल्कुल, तो कि खुद एक्सपीरियंस तो करा नहीं है।
1: खुद एक्सपीरियंस तो किया नहीं, किसी को याद भी नहीं रहता है।
3: बिल्कुल,
1: लेकिन मैंने सोचा ये देखिए नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं और ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह होते हैं इस तरह से, तो इसको किस तरह से इसको प्रस्तुत किया जाए। तो उसको मैं धीरे धीरे कुछ कुछ लिखता रहा, फिर ये बहुत जल्दी नहीं हुआ, काफ़ी टाइम समय लगा इसमें। लेकिन यह है कि ये इस बुक में सबसे पहले आदमी की मृत्यु होती है, हालांकि मुझे अब ये लगता है कि किसी चीज़ को स्टार्ट करना इस चीज़ से शायद

0: बहुत क्रिएटिव टेक है।
1: हाँ हाँ, एक्चुअली शायद पता नहीं कि इससे शुरू करना है या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये शायद सोचता था सीधे सीधे मृत्यु से अगले रिइंकार्नेशन तक इससे इसे किसी तरह से प्रस्तुत किया जाए, तो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था और कुछ कुछ मेरे पास लिखा हुआ भी था, तो मैंने सोचा कि चलो इसे कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करके जिस तरह से ये किताब आई है ये मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आई एम एबल टू डू दैट। एक्चुअली इसके कुछ पार्ट्स तो ऐसे भी हैं कि आई एम सरप्राइज्ड कि इट हैज़ कम आउट ऑफ मी। अच्छा, तो ये है कि इसके तीन पार्ट्स हैं। वन इज व्हेन वन डाइज, कि कैसा उसे महसूस होता है।
0: तो ये लाइक आपने साइंटिफिक वे में ऐसे लिखा या लाइक स्टोरी बुक फॉर्म में लिखा है?
1: स्टोरी बुक फॉर्म में।
0: ओके,
1: एक्चुअली इसमें ऐसा है, इसमें 25 चैप्टर्स हैं, इसके तीन पार्ट्स हैं। पहला है कि डेथ होती है उसे कैसा लगता है, क्या होता है। सेकंड पार्ट में देर इज एजुकेशन पार्ट, वो सीखता है अपनी कमियों से। थर्ड पार्ट में ही इज प्रिपेयरिंग टू रिटर्न बैक। तो पहले पार्ट में होता ये है कि उसका हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे पता नहीं लगता है। सडनली उसे लगता है कि अरे मैं अच्छी तरह सांस ले रहा हूँ, मेरा तो बड़ा मुश्किल से अस्थमा था मुझे, और मेरे यहाँ दर्द होता था, वहाँ दर्द भी नहीं है। बहुत कोशिश करता है, वो सोचता है कि ये हुआ क्या। फिर वो सोचता है कि कोई लोग वहाँ पर जमा होने लगते हैं, वहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है, वो उठाने की कोशिश करते हैं। वो सोचता है अरे क्या हुआ, ये कहाँ से आया, उसे हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हेल्प नहीं कर पाता है क्योंकि उसका जो उसी की बॉडी है।
0: Oh, wow.
1: और वो ही हैज़ गॉन इन टू सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर एक्चुअली ये कहा गया है अपने शास्त्रों में भी कि तीन बेसिक बॉडीज होती हैं। वन इज स्थूल बॉडी, जो कि हमारी पंच तत्वों से बनी होती है, जो कि जब हमारा क्रीमेशन होता है तो उसमें पंच तत्व में विलीन हो जाती है। दूसरी होती है स्थूल बॉडी। स्थूल बॉडी में आपका आपके तीसरा नेत्र खुल जाता है, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने सोचा होगा कभी कभी कि आप जब कोई काम करते हैं तो आपकी अंतरात्मा कहती है कि आप इसे करें या ना करें। सो दैट इज़ वेरी डीप बी सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी विद इन यू। आपने कभी महसूस किया
2: वो हायर बीइंग है जो आपको।
1: अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब वन गोज थ्रू दिस लाइफ रिव्यू, लाइफ रिव्यू में ऐसा होता है कि नॉट ओनली इट इज समथिंग लाइक, ये कहा गया है कि इट इज समथिंग लाइक होल ऑफ योर लाइफ इज शोन यू इन वन इंस्टेंट ऑल द डिटेल्स ऑफ इट। अच्छा, उसमें क्या होता है कि
0: कुछ 7 मिनट फ्लैशबैक कुछ ऐसा होता है ना,
1: वो हाँ जो भी है, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि आप जब लिखने जाते हैं तो उसे इंस्टेंट में तो नहीं लिखा जा सकता, धीरे धीरे करके लिखा जाता है। तो जब उसे लिखा जाता है तो उसमें जो फीलिंग्स होती हैं, जो इंस्टेंसेस होते हैं, उसमें अगर मैंने यतींद्र जी से कोई बात कर दी जो यतींद्र जी को बहुत बुरी लगी, तो मेरी क्या फीलिंग थी उस बात को कहते हुए, मैंने क्यों कही और यतींद्र जी को कैसा लगा, ये दोनों की भावनाएं वहाँ पर आती हैं।
0: हाँ जी,
1: जब कि लाइफ रिव्यू होता है तो उसमें तो इस तरह की बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। और जो मैंने अंतरात्मा की बात की, तो थोड़ी देर के बाद वो ही हियर्स समथिंग, तो उसे क्या लगता है कि ये कहाँ से आवाज़ आई, तो वो उसकी अंतरात्मा एक तरह से उसके साथ प्रकट होती है। एंड वो अंतरात्मा उसको ही टेक्स हिम ऑन एजुकेशनल जर्नी कि आपका ऐसा ऐसा हुआ था, ये काइंडनेस का क्या रोल है, अप्रिसिएशन का क्या रोल है, आपस की रिलेशनशिप का क्या रोल है। तो इसमें कई बातें हैं एक्चुअली इसकी, इसमें जो सेंट्रल थीम है उसमें ये विवेक जो हीरो है, उसकी वाइफ, दो बच्चे और ये विवेक का एक और भाई है, छोटा भाई
0: जी।
1: तो होता ये है कि उसकी माँ बीमार होती है, नर्सिंग होम में होती है इन दोनों भाइयों की। तो जो विवेक है बड़ा भाई, वो हर वीकेंड उसे देखने जाता है बड़ी लंबी ड्राइव करके 2 साल। छोटा भाई कभी जाता है कभी नहीं जाता है। इसी तरह से माँ की जब मृत्यु हो जाती है तो ये जो बड़ा भाई है ये सारे अरेंजमेंट करता है, और छोटा भाई फ्यूनरल के बाद थोड़ी देर बाद पहुँचता है तो उससे बहुत बुरा लगता है कि एक ऐसा भाई आया माँ के उसमें नहीं आया या देर से आया। तो जब 13वीं होती है तो इस सब के सामने जितने रिश्तेदार होते हैं उसको उनके उस पर कमेंट कर देता है कि कुछ लोगों के पास समय नहीं है, तो छोटे भाई को बहुत बुरा लगता है। तो ये जो बात है उसके दिमाग में रहती है, मरने के बाद भी वो सोचता है यार मेरी गलती थी कि छोटे भाई की गलती थी, मुझे फ़ोन उठाकर उससे बात कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने 11-12 साल तक बात नहीं की आपस में जिस सिर्फ इसी वजह से। तो इस तरह ये कहानी है शुरू से लेकर आखिर तक। और जो ये जो अनरिजॉल्व बिजनेस है ना दो भाइयों का, ये दिस इज शोन एज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वन हैज टू कम बैक
2: जी।
1: जो कर्म हमारे अनरिजॉल्व रह जाते हैं उसकी वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं। तो इसमें यह भी दिखाया गया है कि जैसे कि आपने बोला कि एक आप किसी ने अप्रिशिएट किया और आपको अच्छा लगा, आपने बताया लोगों को, लोगों को लगता है कि हमें भी अच्छा काम करना चाहिए।
3: एक मैं अगर बात कह दूं, मैंने इस बात को ऐसे लिया है कि ये प्रोफेशन के लिए है। मैंने अपने से इसको हटा दिया है कि अकाउंटेंट का जीवन में कितना बड़ा रोल है। आज मुझे इस चीज़ को कहते हुए गर्व भी है और थोड़ा एहसास भी हो रहा है कि हमने इस चीज़ को पहले क्यों नहीं समझा कि अगर आपके पास में एक अच्छा अकाउंटेंट है वो आपको डॉक्टर के पास जाने से बचा सकता है।
1: उस आदमी ने अपना मास्क हटाया, उसके लिए बेनिफिट हुआ, आपके लिए बेनिफिट ये हुआ कि आपका भी ब्लड प्रेशर डाउन हो गया।
3: नहीं वो जी, मैं वैसे कह रहा हूँ कि
1: इसका दूसरा एंगल मैं बता रहा हूँ कि इससे समाज पर क्या फर्क पड़ता है। समाज में लोग जब अच्छी बातें सुनते हैं तो वो भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं।
2: इसके लिए
1: कोई एक्शन ऐसा नहीं है जिसका असर नहीं होता है, हर एक्शन का असर होता है। तो हम कहाँ तक पहुँचे जतिंदर जी?
2: मेरे ख्याल से अभी एक छोटे से अंतराल था।
0: नहीं, बैक टू द प्लॉट, वो हम डिस्कस कर रहे थे कि वो छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में अनरिजॉल्व्ड इशू रह जाते हैं, तो आप री इनकार्नेशन के बारे में बात कर रहे थे उसमें।
1: हाँ, तो ऐसा है कि उसके दिमाग में एक कसक रह जाती है कि शायद मुझे फ़ोन करके उसे बात कर लेनी चाहिए थी, मेरा छोटा भाई है। लेकिन जब तक वो ज़िंदा था तब तक उसे लगता था यार ये बड़ा गधा आदमी है, मैं मतलब इतना इररेस्पॉन्सिबल है, मैं इससे क्या बात करूँ, उसकी गलती है, उसे फ़ोन करना चाहिए। लेकिन ये बात सिर्फ इसी बात को लेकर उसे ये लगता है कि उसे रिजॉल्व कर लेनी चाहिए थी।
3: तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं प्रदीप जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और फिर हम क्योंकि हमें स्पॉन्सर को भी ध्यान में रखना है, उनको भी हेल्प करना है, वो हमें हेल्प करते हैं।

0: Curry Master's Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: श्रोताओं, आपको कम्युनिटी अनाउंसमेंट्स में बता दें कि हमारी ऋचा जी एक माता की नवरात्रि भजन नाइट का आयोजन कर रही हैं, जिसका नाम है ट्रिपल एस संगीत संस्कृति सनातन। तो ये जो माता की चौकी समझ लीजिए या माता के भजन होंगे नवरात्रि के दौरान 18 अक्टूबर को 5 से 9 तक इसका आयोजन है ग्रेविला रूम वेंटवर्थविल कम्युनिटी सेंटर 2 Lane Street वेंटवर्थविल। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहें तो ऋचा जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका नंबर है 04135612 93। तो ये तो ऋचा जी ऑर्गेनाइज कर रही हैं। फिर राजेश जी लिखते हैं, मैं कुछ सबके ख्यालात भी शेयर करना चाहूँगी हमारे इस प्रोग्राम के बारे में, गुड स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। प्रदीप जी लिखते हैं, वाह क्या बात है, एआई का भजन। हेमलता जी लिखती हैं, नमस्ते टू दर्पण रेडियो एंड योर टीम, वेरी नाइस प्रोग्राम, इट इज़ अनबिलीवेबल, इट्स सो रियल एंड वेरी वेल संग, आई लाइक्ड इट। फिर जो अगला आया है विचार, वो ये है कि वेरी नाइस भजन स्पेशली फॉर यंगर जनरेशन, इट विल कनेक्ट देम टू लॉर्ड गणेशा। लीला जी कहती हैं, एआई भजन बहुत ही अच्छा लगा।